0: भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी

के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म

0: ऐप और हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
3: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है।

0: सिद्धार्थ सिंह।
1: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया मार्क्स 10th एनिवर्सरी ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इट डेमोंस्ट्रेटेड न्यू एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Tiruvananthapuram. And now the news in detail.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे।

0: देंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईटी नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईटी नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం కర్ణాటక సంగీత కార్యక్రమం ఈనాటి కార్యక్రమంలో శ్రీమతి సరస్వతి వాసుదేవ గారి వీణా వాయిద్యం వింటారు. నీ సమానమెవరు శుభ పంతువాలి రాగం ఆదితాళం జిఎన్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కృతి.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप फखरुद्दीन के साथ इलाकाई खबरें सुन रहे हैं। पेश है सुर्खियां। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बीआरके भवन में कांग्रेस के एहतजाज की क्यादत की। एहतजाज के दौरान वोट चोरी के इल्जाम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी ने नेकलेस रोड पर कांग्रेस की रैली को सियासी दिवालियापन और शिकस्त के खौफ की अलामत करार देते हुए इसकी मजम्मत की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बहादुरगुड़ा के मुतासरा किसानों से मुलाकात की और इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए गरीब किसानों की जमीनें जबरदस्ती हासिल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एव रेवंत रेड्डी ने 2026 एशियन गेम्स में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली हैदराबाद की शूटर ईशा सिंह को मुबारकबाद दी और एल नैनो के बायस तेलंगाना में दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में दर्ज हरारत में मजीद 2 डिग्री सेल्सियस इजाफे की पेशगोई की है। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के निकलेस रोड पर कांग्रेस कायदी ने एहतजाज करते हुए SIR के तहत वोटर लिस्ट की नजरसानी में मुबैना खामियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा किया। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर और दानम नागेंद्र की क्यादत में कांग्रेस कायदी ने इंदिरा गांधी के मुजस्मे से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। हैदराबाद के KBR के भवन में कांग्रेस के एक बड़े एहतजाज की क्यादत करते हुए

डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के बारे में दी गई वार्निंग दुरुस्त साबित हुई है। आईन की एक कापी हाथ में लिए भट्टी ने एक याददाश्त पेश की और तमाम जमहूरी कुव्वतों पर जोर दिया कि वो शहरियों के हकूक के तहफ्फुज के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैदराबाद के निकलेस रोड पर कांग्रेस की रैली की मजम्मत करते हुए बीजेपी तेलंगाना के तर्जुमान एनवी सुभाष ने इसे सियासी दिवालियापन और शिकस्त के खौफ की अक्कासी करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अपोजिशन को दबाने के साथ साथ आईनी इदारों को धमकियां दे रही है और अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रही है। साबिक रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी रियासती नायब सदर डॉक्टर बी नरसैया गौड़ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये आने वाले रियासती इंतखाबात में शिकस्त के खदशे के पेश नज़र पहले से तैयार किए गए बहाने हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को चैलेंज किया कि अगर वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं तो पहले उन हुकूमतों से इस्तीफा दे जो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में तश्कील दी गई थी। निकलेस रोड पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मुतालिबा पर कांग्रेस के एहतजाज में शिरकत करते हुए कांग्रेस कायद दानम नागेंदर ने आइंदा खैरताबाद जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी का एतमाद जाहिर किया। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बहादुरगुड़ा के उन किसानों से मुलाकात की जिनकी अराजी बुलेट ट्रेन मंसूबे की जद में आ रही है। केटीआर ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो किसानों को हरासा करने के बजाय उन कायदीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है जिन्होंने 420 वादे नहीं किए थे और उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर गरीब किसानों की जमीन कमीशन पर हासिल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत एयरपोर्ट की जमीन या अहम सियासतदानों की निजी अराजी के बजाय किसानों की जमीनों को निशाना बना रही है। केटीआर ने केसीआर के एक साल के अंदर वापसी का एतमाद जाहिर करते हुए किसानों को सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी मदद फराहम करने का वादा किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जापान में जारी 2026 एशियन गेम्स में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल इंफरादी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली हैदराबाद की शूटर ईशा सिंह को मुबारकबाद दी। उन्होंने 5 शूट ऑफ मरहलों के दौरान ईशा सिंह के पुरसुकून अंदाज की सताइश करते हुए इनकी जद्दोजहद और हौसले को सराहा। चीफ मिनिस्टर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो आलमी सतह पर तेलंगाना का विकार मजीद बुलंद करती रही हैं। एल नैनो के असरात के बायस तेलंगाना में दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। निजामाबाद और महबूब नगर में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि खम्मम में 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो मामूल के 31.8 डिग्री के मुकाबले में ज्यादा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मजीद 2 डिग्री सेल्सियस इजाफे की पेश गोई की है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। गांधी भवन में यूथ कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने नौजवान कायदीन पर जोर दिया कि वो आवाम के दरमियान सरगर्म रहें और हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मेहनत और सियासी लगन मौके फराहम करती है। महेश कुमार गौड़ ने यूथ कांग्रेस के तारीखी किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि तंजीम ने कई अहम सियासी कायदीन को तैयार किया है। उन्होंने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों को तरजीह देने का वादा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इंजीनियरिंग अहदेदारों को यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल की तामीर का काम तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने 24 घंटे काम जारी रखने, मुकर्रा मुद्दत में तामीर मुकम्मल करने, हफ्तावार पेशरफ्त का जायजा लेने और मुसलसिल सीसीटीवी निगरानी को लाजमी करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने 1 अक्टूबर को मुकर्रा कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास को मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इस दिन चीफ मिनिस्टर की सदारत में रियासती काबिना का इजलास तय है। महकमे आपाशी के इंजीनियर इन चीफ रमेश बाबू ने केआरएमबी के चेयरमैन को बाजाब्ता खत रवाना करते हुए इजलास के लिए नई तारीखें मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। खत में कहा गया कि काबिना के इजलास में अहम इंतजामी उमूर पर गौर के बायस आला ओहदेदार मसरूफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत

0: 2000 से जायद मालियत के मखसूस UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट आयत किया जाएगा और ये फैसला अगले माह की 15 तारीख से नाफिज होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने मामले को तकनीकी नौयत का करार देते हुए मरकज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया। अदालत ने यह भी नोट किया कि 96% सारिफ इस इकदाम से मुस्तस्नी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाजे किया कि MBBS के क्वालिफाइंग इम्तिहान से कबल तेलंगाना में मुसलसिल 4 साल तालीम की शर्त मुकामी रिजर्वेशन का दावा करने के लिए लाजमी है। ये शर्त सदारती हुक्मनामे के मुताबिक है। जस्टिस BR गवाई की बेंच के साबिक फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने जिला अंगिता की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसमें इस शर्त को मनमानी करार देते हुए चैलेंज किया था। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा है। राजन्ना सिरसिल्ला मुदिराज वेलफेयर एसोसिएशन के कायदी ने तेलंगाना भवन में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से मुलाकात की। KTR ने हालिया मुदिराज सिम्हा गर्जना इजलास की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि मुदिराज बरादरी को BCD से BCA जमरे में मुंतकिल करने के वादे को पूरा किया जाए। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 30 सितंबर को करीमनगर के नए कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करने के लिए मुजवजा दौरे से कबल जिला कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अहदेदारों को बेहतर तालमेल के साथ इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी। जनगांव जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने RDO किरण प्रकाश के हमरा पालकुर्ती में सोशल वेलफेयर गर्ल्स गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने तुलबा को चूहे के काटने से मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली खबरों को मौके पर जांच के बाद बेबुनियाद करार दिया। जिला मेदक कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने किसानों पर जोर दिया कि वो एल नैनो के बायस चैलेंजेस से निमटने और मुस्तकिल आमदनी को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल फसलें बशमोल पॉली हाउस सब्जियों और पाम ऑयल की काश्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोड़ीपल्ली मंडल के मतराजपल्ली का दौरा करते हुए कामयाबी से चलाए जा रहे यूरोपी खेरे के पॉली के हाउस का मुआयना किया। यादाद्री भुवनगिरी जिले में कांग्रेस कायदीन ने SIR तनाजे पर चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। आलमी यौम खल्ब के मौके पर नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड याफ्ता संपत कुमार और माहिर हयातियात कोमरैया ने राजना सिरसिला के दमनापेट सरकारी स्कूल में 15x15 फिट का एक बड़ा दिल का खाका तैयार किया। शिरयानियों और वरीदों की नुमाइंदगी के लिए सुर्ख और नीले रिबिन इस्तेमाल किए गए थे। आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने KBR के भवन में कांग्रेस के एहतजाज की क्यादत की। तेलंगाना BJP ने नेकलेस रोड पर कांग्रेस की एहतजाजी रैली को दिवालियापन करार दिया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने बहादुरगुड़ा में मुतासरा किसानों से मुलाकात की। ये आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కొన్ని ప్రసార విశేషాలు ఇప్పుడు విందాం. ముందుగా ఈ ప్రసారంలో సాయంత్రం 6:30 ప్రసారమయ్యే పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో శ్రీ కె కొండయ్య బృందం పాడిన చెక్కభజన గీతాలు వింటారు. 7:15 వ్యవసాయ పాఠశాల ఈ కార్యక్రమంలో రబీలో సాగుకు అనువైన ఆరుతడి పంటల యాజమాన్యం గురించి అనంతపురం జిల్లా వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎం విజయశంకర్ బాబు గారి ప్రసంగం వింటారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. అనంతరం వికసిత్ భారత్ ప్రసారమవుతుంది. 8:15 చిత్రసీమ సినిమా పాటలో 9:30 అలనాటి గీతాలు ప్రసారమవుతాయి. 10:00 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026లో భాగంగా రోజువారీ ముఖ్యాంశాల సమాహార ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. అనంతరం కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने

0: सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने यह बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहां भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
6: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
5: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
7: So if you want to make more export,
8: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
7: 6% so it comes to 10% one year before.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की

0: दसवीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
2: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
2: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में, 3:37.92 के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से, 8:21.67 समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारतीय चौकली चौथे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी।

0: शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुँचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशिमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Mo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garam 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक 3 मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम दिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए 3रा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र

0: अंदर और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarter finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
3: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से

डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच

0: 9-4, 11-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सिपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासु ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र अनुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में 3-3 भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।